सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पछा, श्री अह तुज जो कर अह रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

कैठा सिगरी सरिहत दिखाया चंपव आद जुंगाद स्वरूप स्वयं पव अवरछा मेरी तुम करो सिखियो बारे सिख संग रहो दुहित दिते उठवते उत्पाता सकल मिले करो रण काता जे अहित तो तब सरनी परे तिनके दुहित दुहित हो मरे

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बन के छकिया देह चलाई तेग वाही देह के अमढ़ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया

महापुरख के निज घर वासा होए जी ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पबै भव जल डूबो मूड़े माया विच गलतान भया पबै भव जल डूबो मूड़े।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करन औने दया में ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती। आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाशमान होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जीआं दा कोटान कोट धन्नवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जीआं दे पावन सरूप दे सुखासन दी सेवा होई है। सोहिला साहिब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक दी खिमा बख्शन आप जीआं दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया है। आई रहन आप दे पाने विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्श। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श। के निहाल करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तर माहे मिटावो सिमरौ जास विश्वंभर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमृत सुधा खेर

किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न आवे, कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जाम नसै, प्रभु कै सिमरन

सिमरन साधक संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाओ निद्ध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन मनसा दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सफल फला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरा मुच्छा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा प्रभु का सिमरन सबके सुझा प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाहे अमृत नाम रद माहे समाये प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तन बनते प्रभु को सिमरे से पत बनते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा बिनाशी सिमरनते लागे जने आव दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरे से पारोपकारी प्रभु को सिमरे तन सदबलहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा अंधिन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहस समानी प्रभु कै सिमरन नेचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनका हर सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जान जिन कौ प्रभ मया नानक तिंजन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भये सत जति दाते हर सिमरनी चौं कुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना

शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम दरे पतत बहमूच बहुत सियाणप जमका भाओ व्यापै अनग जतन कर त्रिशन्ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझाए कोट पाप दुर्गे नहीं सजाए छूट नाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जार अवर करतूत सगली जब डाने गोविंद भजन मिंत नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक भुलै सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जेको अपनी शोभा लोरे साध संगे हो मैं छोरे जेको जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी पराए जिजन को प्रभु दर्श प्यासा नानकता के बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौगनिये सबते उच्चा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम दिन घट घट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सृठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता।

पतजाए अष्टपदी दस पसूले पाशे पावे एक पस कान मिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लगा पर मीठा सर्व सुखता हूं मन बुठा जजन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शाप नी दे रास खात पीत बरते अनंत उलास अपनी मान कछ बहुशाल ज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आगे रखे प्रभु की आज्ञा माना माथे उसे चौगन करे।

काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तस ठाकुर को रखमन माहे, जय प्रसाद सुगंध तन लावे तसको सिमरत परम गत पावे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याए सदा मनंदर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आड़ बहर सिमरो तस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए ध्यान जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे, जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाड़ पहर ताका जस गावी जय, जय प्रसाद तू सबको माने मुखता को जस रसन मखाने, जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जब दुर्गे मान पावे नानक पद सेती कर जावे, जय प्रसाद आरोग कंचन देही लबलावत सराम सनेही, जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत, जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जय प्रसाद तुझको न पाहु चै मन सासा सिमरो प्रभ ऊचे, जय प्रसाद आप भुखन पहरिज मन तिस्मृत क्यों आरस कीजै, जय प्रसाद अस सुबारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी, जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है, जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ भैर कर तिसका ध्यान, जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमरता सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत रह गुरु प्रसाद नानक जसु कहा, जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद वेखे विसमाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तस प्रभु को मूल ना मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप, जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तुझ जान मन सदा हजूरे, जय प्रसाद तुम पावे साज रे मन मेरे तू ता स्यों राज, जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोहे आप जपाए जपै सो नाहो आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु किरपाते होए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विकास, प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया पो कछु न किन्हु लया,

नीते काश बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता।

बंधा ब्रह्म ज्ञानी गवय स्वपला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी

आनंद ब्रह्मज्ञानी कारु सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का वह अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस कराय प्रभया ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सुर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत

प्रजापष्टपति जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाध तैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्हना जापत भर्ग सो कऊ किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो गांत परमापन खेरावर तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुक्त कहो किसको घनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर्ग कहो कौन अवतार तब नर्क सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आप अपनी जो तरह तब कमन ने डर कमन कत डर आपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसंत जन्म मरण कहो का बिना संजय पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानका पुनरुपा भी प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पा तो बिन मैल कह हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बांत है कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीशता छल क्षेत्र लगत कहो कीस जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूकम त्रिवताव करण ग्रामन करने हार नान करते का राहे समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माये बाप मित्र सुत भाई जय सर्वकलापे पर बीन तय भेद गतेव कह कऊ चीन जब अपने आप उतारे तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जय अपनु जपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिये चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को अभया देश तेह गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अजंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपत यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बह बयान दूज दे ऊचा नानक आपस को अभे पहुचा जय आप रजो प्रपंच अकार तेह गुण में किन्नो विस्तार पापुन तय भई कहावत कहू नारको स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह ब्रह्म व्यापार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखा है खेल संकोच है तो नानक एक है जब अवगत भक्त है आप जब पसरे पास हार संत प्रताप दो बाग आपे दे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे रंग चोज आपे आनंद करे आपे कौतक करे आनंद जोग आपे रस भोग अंदर जोग जिस भावित आपन नाये लाभ है जिस भावित खेल खिलाव है

संजना कह हृदय सब धर्म, संजना सुने सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सद बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माना, कर्ण करावन हार ब्रब जाना। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक देश दर्शन देख सब मोही। आप सद किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात। तिस भावता करे विस्तार, तिस भावता एक अंकार। अनकला लखी रह जाए, जिस भाव तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिया, दूरा पिया बा प्रभुर। अंतर्गत साप जनाए, नान तना बुझाए। सर्वभूता अवतारा, सर्वनैना पेखनहारा। सगल समग्री जाका, तना आपन जस आप ही सुना।

अष्टपदी पूरे गुरुका सोनपदे स पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मानंत्र की उतराय चिंद आसन त्यागो त्रंग संधना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हो सा संग अगन सागर तरह हर तन के परले हो भंडार नानकर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवास उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

मोह न सकै काल, नानक भगता सदा विंगास। सुनया है दुख पाप का नास, सुनया है इस

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्ष सार।

सोई। केव करे आखा केव सालाही क्यों वरणी केव जाना नानके आखन सबको आखे एक दू एक सियाणा।

बोध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुंजन सेव केते आख आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेह ताख न सकन है केई के देवड पावे तेवड होए नानक जान साचा सोए जे को आखे बोल विंगाड़ ता लिखी।

पासा ही दसवीं छपे छन तव प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पाद नहन जेह रूप रंगर रेख भेख कह कह न सकत के अचल मूर्त अनपहो प्रकाश अमित कही जय गुड़ इंद्र इंद्राण साहे साहान गणि जय तिरपह मही सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत तुवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पजंग प्रयास छंद

निर्वाके नमस्तंग ह्रीमे नमस्तंग क्रीमे नमस्तंग नन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तहतरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चात्री शन तव प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक अपेख है अनाम है अकाम है अतेह है अपेह है अजीत है अपीत है त्रिमान है त्रिवर्ग

प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त जौन पुरुख अपार सर्वमान तिरमान देव पेवादि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल

हैं पवित्राय परथी से अदि से अदरी से अकृत से भगवती शांत व प्रसाद कहते के अछज दे सह के अपेहज पेह सह के अगंज करमे के अपांज भरमे के अपेहज लोक कह के अदित सोक कह के बतुहूत बरने के विभूत करने के राजन प्रवाह के धर्मंग तुझा हैं के अशोक भरने के सर्वा भरने के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपौ अनुपय

केसर बत्र पिहसै, केसर बत्र कालै, केसर बत्र पालै, केसर बत्र हमताऊ, केसर बत्र गंताऊ, केसर बत्र पिखी, केसर बत्र पिखी, केसर बत्र काजै, केसर बत्र राजै, केसर बत्र सोखै, केसर बत्र पोखै, केसर बत्र त्राण, केसर बत्र प्राण, केसर बत्र देसै, केसर बत्र पिहसै, केसर बत्र मान्या, दैवं प्रधान्या, केसर बत्र जाप्या, केसर बत्र थाप्या, केसर बत्र पान्या, केसर बत्र मान्या, केसर बत्र इंद्रया, केसर बत्र चंद्रया, के सर्वं कलिमे, के परमं फहीमे, के आकल अलामे, के सहव कलामे, के हुसन अलवजू हैं तमाम रजू हैं, हमें सल सलामे, सलीख तुम दामे। गनी बोल सीखाते, गरीबल परास्ते, बिलंदर मकाने, जमीन अल जमाने, तमी जल तमामे, रुजू वाले दाने।

अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगते अनूप है, चातरी छंद

अनंत है, के सर्वल गवान है, हमें सलरवान है, तुमामल तमीज है, समातल आदिज है, परंग परम ईश है, समातल आदिश है, देशल अलेख है, हमें सल अपेख है, धिमिडल जुमा है, अमी कलेमा है, करीमल कमाल है, के जुरात जुमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आतंक प्रभा है, के अचलंग नाग है, के अमितो पांग है, के अचलंग नाग है, के अमितो अपांग है, माद पहर शांत वे प्रसाद, मन मान प्रणाम, गुण गण दाम, हर वर गांज हर नर पर पांज, अन गण प्रणाम, मन मान सलाम, हर नर अखंड बर नर अमांड, अन पहुनाश, मन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मदाम, आन चिंद अंग आसने अपांग, उपमाम पार गत मिति उदार, जल थल अमांड, देश वैसे अपांड, जल थल महंत, देश वैसे बेअंत,

चलेंगे। वीर अपार बड्डे बरेहार विचार है सार की धार पछैया तोर देश मलेंद मवासन माते गजान के माल मलैया गाड़े गड़ान के तोल हार सुबह तरही चक चार लवैया सहब श्री सब को श्री नायक जाच एक नेक सो एक दिवैया दानव देव फणेन्द्र साचर पूंद पवेक भवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे था।

तुम बितायो। साज कहो सुन लेहो, सब है जन प्रेम कियो, तन ही प्रभु पायो। काहू लय पाहन पुह तरयो सिर, काहू लय लिंगरे लटकायो।

सेख सबै करतार मूरछा निज कर दय करिये संभरिन को आए संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अमर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सेख हमारे

अनुमानत महा मूढ़ कह भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निहंकार का चिंत नह पिहव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णित पहन पहन तुह तेती तुम राखा न जाय पिसार कह विद सजा प्रथम संसार।

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किलबुख सकल देह को हरता दुष्ट दोखेन को शय करता श्री अह तो जय पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाहित फल पावे सोई दुख न तिसे बेआवत कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाय सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वही दुख दर्द पहो निकट ना तर नर के रह हो जो जा की एक बार जाओ पही को कह जाओ पही संबद सत्रह सहस पनि जय अर्ध सहस पुण तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते कुंवांग तरह नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान ने कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूं सब तो हे बखान्यो दोहरा

सुखमनया वस्याजन इच्छा सब पुजाई। सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जिस दीया एह वडियाईया कह नानक सुनो संतह शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा उधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग है घर सुभाग है शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूध तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।

हुकम मने पाइए। हुकम मने हो गुरु के रागा भो सची बाणी, कहे नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ये मन चंचला चतुराई कने न पाया, चतुराई न पाया कने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिने इत परम पलाया, माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाइया। कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचे जिते अंत पछोताइए। सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे तेरे नाले, कहे नानक मान प्यारे तू सदा साज संभाले। अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा।

से हर हर सदा दयाव है, जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पाव है। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे ते वै चलाव है। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरहु लिखिया एक फिर।

मन चाव भया प्रभागम सुनया, हर मंगल गाव सखी गृह मंदिर बनया। हर गाव मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापै। गुर चरण लागे दिन भागे, अपना पिर जापै। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर

जग में आया। दिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नवसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कहे नानक हो शरीर प्रवान होआ, जिन सतगुर सिउ चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार, तुम देह दे एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर न कोई, कहे नानक हे नेत्र आंसे सतगुर मिलया है। देव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनना नो पठाए, साचै सुनना नो पठाए। श्री लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ। रसना रस समाणी सच अलख विडानी, ताकी गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, बहु साचै सुनना नो पठाए।

पवन जाया एहो साचा सोहिला साचे कर गाव गाव ता सोहिला घर साच है जिथे सदा सच ध्याव है सचो ध्यावे जा तुद पावे गुरुमुख जिना बजावे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सोजन पावे कह नानक सच सोहिला सच कर गाव है आनंद सुनहो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे

दयो विसार विगुचना प्रभ ने अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लग है तिनकी निर्मल सोय नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होय वै साख सुहावा ता लगे जा संत भेट है हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिसे अगे सब ने मन हर सज्जन दावन लग्या किसे न देही बन मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करान जो प्रभ कीते आपने सही कही है तन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्रापते नानक रंग मनन हर जेठ रंगी लात तनी जिस कै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मां

सावन सरसी कामनी चरण कमल से प्यार मन तन रत्ता सत रंग इको नाम उदार बिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन सबे श्यार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलना नो मन लोचदा कर्म मिला मन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हो तिन कै सद बलिहार

हेत लाख सिंगार बनाया कार जना ही केत जित दिन देह बिन सही तित वे लै कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत छड खड़ो ते खिणे माहे जिन स्यो लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे स्याह हो आसेत।

तोर संयोग विड़पागी मेरा प्रभ मिले ता उतर सब योग नानक गव प्रभ राखिले मेरे साहिब बंदी मोज कतक होवे साध संग बिनसे सबे सोच मंग

सुख सुहंदा सर्व सुख जिस भग सेवे परिवाहु माग मजन संग साधुआ तूड़ी करे स्नान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म कर्म वाले उतरै मन ते जाए गुमान काम करो।

कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसा ही पातशाहियां दी जोत सर्बसांझी वालता दे लखायक शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र हजूरी विच विराजमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु स्वरूप सात संगत जी बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तों नितनेम दियां बाणियां दे पाठ आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो

दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए आसुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए।

कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम जो प्राणी ममता तज लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तर और न लेत उदार ज्यों सुपना यर पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक को नारायण जह चीत जैसे जलते बुध बुधा उपजै बिन सनीत जगर

गर्भ करता देह को बिनसा छिन मामीता, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीता। जह कट सिम

एक भगत भगवान जय प्राणी कह नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहि तन स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नत नानक ए बिद हर पजो एक मन होए एक चित तीर्थ बरत अरदान कर मन मैं धर गुमान नानक ने फल जात तेह ज्यो कुंचर इशनान सिर काम प्यो पग डग मगा नैन जोत ते ही ना कहो नानक एह बिद पई तऊ न हर रस लीना निज कर देखो जगत मा को काहु को नाहे नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे जग रचना

बल छुट के ओ बंधन परे कछु न होते अपाए। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय। बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होते अपाए। नानक सब किछ तुमरा हाथ मा तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

राम नाम और मैं गहे ओ जाका सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटा दर्श तुहारो होए। राम नाम और मैं गहे ओ जाका सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट।

सब पुत्र रागन के आठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुरप्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचा सोच न हो वही जे सोची लख बार, चुपा चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहस स्यानपा लख हो हे ता एक न चला नाल। किब सचियारा होई है किब कूड़ा तुट्टा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म लै बड़े आई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कह न कोए। गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण बढ़िया चार, गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करी तनखे, गावै को जी लै फिर दे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथि न आवै तोट, काथ काथ कथि कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे तक पाहे, जुगा जगंतर खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक बिकसै बेपरवाहो। साचा साहेब साजनाए भाख्या पाओ अपार, अख है मंगह देह देह दात करे दातार। फेर के अग्गा रखिया जे दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिया जर सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच ना हो बड़ियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवा जाणिया सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सो कर लै जाई। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर, पार्वती माई। जे हा जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गोरा एक देह बजाई, सब ना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दुविधाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। जिन्ने नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: Bye.
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Bye.
0: Bye.

सोठ महला पंजवा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंड, निको ठाकर देसा। हम पापी तुम पाप खंड, निको ठाकर देसा रहो। तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पेंड दे प्राण। तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पेंड दे प्राण। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबान। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबान। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयालु। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयालु। तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम दान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, तुमने दान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे। कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष, कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष, कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष। फिर कर बह सो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काशवार। फिर कर बह सो हर जन प्यारे, सतगुर

निरपो होए पंजो भगवान, निरपो होए पंजो भगवान, साध संगत मेल तीनों दान, साध संगत